त्वमयक्ष्मया यक्ष्मया त्वं त्वमयक्ष्मया परिपर्ययक्ष्मया त्वं त्वमयक्ष्मया परि अयक्ष्मया परिपर्ययक्ष्मया यक्ष्मया परिभुज भुज पर्ययक्ष्म

भजामः अपस्पिन्वा ओषधीर्जिन्वा द्विपात्वाहि चतुष्पादवा दिवो वृष्टिमेरया। अद्य आङ्ग्लसंवत्सरस्य नूतनवत्सरस्य आरम्भः। अस्माकं व्यवहारे इदं नूतनसंवत्सरदिनं व्यवहारकाले। अस्मिन् दिने एवं वेदसप्ताहस्य तृतीयदिने सर्वे जनाः यूयं बहूनि दूरदर्शनदृश्यानि त्यक्त्वा अत्र आगताः। वेदे के विषयाः इति वक्तुम् अद्यैव षड्भ्यः पाठशालाभ्यः यजुर्वेदविद्यार्थिनः प्रायः शतसङ्ख्याकाः समागताः। अस्माकम् उपन्यासे बहुषु विषयेषु अस्मिन् दिने केचन विषयाः इदानीं दृश्यन्ते। नेत्र इदनं प्रवचनतुम्बोदो இந்த தர்பாங்கிறது என்ன நம்ம பண்ணுறோம் இல்லையா, ஒவ்வொரு காரியங்கள்லையும் தர்ப போடுறோம், அது எப்படி உண்டாச்சு, அதனுடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் பார்த்தோம். அது உண்டான விதம் வேதம்

वयं भजतां भागी भागं मा भागो भक्ता भागं भजामः अपस्पिन्वा ओषधीर्जिन्वा द्विपात्पाहि चतुष्पादवा दिवो वृष्टिमेरया। अद्य आङ्ग्लसंवत्सरस्य नूतनवत्सरस्य आरम्भः। अस्माकं व्यवहारे इदं नूतनसंवत्सरदिनं व्यवहारकाले। अस्मिन् दिने एवं वेदसप्ताहस्य तृतीयदिने सर्वे जनाः यूयं बहूनि दूरदर्शनदृश्यानि त्यक्त्वा अत्र आगताः। वेदे के विषयाः इति वक्तुम् अद्यैव षड्भ्यः पाठशालाभ्यः यजुर्वेदविद्यार्थिनः प्रायः शतसङ्ख्याकाः समागताः। अस्माकम् उपन्यासे बहुषु विषयेषु अस्मिन् दिने केचन विषयाः इदानीं दृश्यन्ते। नेत्रैदनं प्रवचनतुम्बोदो இந்த தர்பாங்கிறது என்ன நம்ம பண்ணுறோம் இல்லையா, ஒவ்வொரு காரியங்கள்லையும் தர்பம் போடுறோம், அது எப்படி உண்டாச்சு, இதனுடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் பார்த்தோம். அது உண்டான விதம்